0: दोस्तों साथी आपको स्वागत करते हैं अल्ताफ जी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रवीण मराठा अविनेश और हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहिल पैनलिंग पे, और हम शुक्रिया करना चाहेंगे निको को जो हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, जो हमें आगे चल के मदद करेगा वीडियो में। और जो लोग हमें अभी फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे हैं सभी को स्वागत करते हैं, और ये भी बतला देते हैं कि थोड़ी देर के बाद में हम फेसबुक लाइव में भी जाएंगे ताकि आपसे हम कुछ और भी जो समाचार है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। आज का जो हमारा विषय रहेगा चर्चा का, जिसके विषय में बात करेंगे, वो है दुर्गा पूजा। जो दुर्गा हम उत्सव कहते हैं क्रशेश में होता है धूमधाम से। इस बार जो ग्रुप है हमारे साथ है, शामिल हो रहे हैं और एक सदस्य और आएगा, एंड देन वी विल बी रेडी। और फिर हम तो जो इंटरव्यू वो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एंड इट इज फ्रॉम दी बंगलियाना मल्टीकल्चरल क्रशेश, जो हमेशा ये जो पूजा करता है, और इस साल उसका जो वेन्यू है टेम्पलटन हॉल, तो उसके विषय में बात करते चलेंगे। उसके जो मेंबर्स है उससे हम बात करेंगे, और साथ साथ में ये आई नो इट्स स्प्रिंग एंड टुडे अगर क्रशेश में देखा जाए तो वेदर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सुहाना है एंड काफ़ी वार्म थे। बट हालांकि अगर कल हम देखेंगे तो कुछ ठंड हो चुकी थी, तो द वेदर इज प्लेइंग अ बिट फनी। इट इज सेप्टेम्बर, वी विल सी क्या आगे होता है, बट अनुमान यही है कि आगे धीरे धीरे जो समय बढ़ता है देन वी आर गोइंग टू गोइंग वो मावेदा। और ऑब्वियसली एक्चुअली मैं आज गया था एक शॉप में और मैंने देखा कि दी क्रिसमस स्टफ इज आउट देयर, तो या इट्स क्रिसमस बेसिकली, वी आर एंड ऑफ द ईयर, एंड आई नो आप भी सोच रहे होंगे अगर आपने तैयारी नहीं की है देन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर इट एज वेल। एंड साहिल ऑफ कोर्स ही हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द कंट्री एज वेल, तो साहिल डू यू नो डिड यू रियलाइज कि क्रिसमस आ गया निकट?
1: हेलो, एक्चुअली क्रिसमस डेकोरेशन है, हेलोवीन डेकोरेशन है।
0: नहीं नहीं, आज मैं गया था,
1: तो हेलोवीन डेकोरेशंस आर आउट काफी जगह, वो स्केरी स्केरी
0: वाला
1: क्रिसमस थोड़ा अच्छा होता है ना, हेलोवीन थोड़ा डरावना होता है, तो दैट्स हाउ
0: ऐसा लग रहा है अभी बस शुरू ही हुआ है और खत्म होने वाला है। इट इज गोन सो फास्ट, ये जो हम साल कहेंगे काफी हेक्टिक था, और आई डोंट नो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल

0: टू मी पर्सनली लग रहा है कि क्रश है, बहुत सारे इवेंट्स हुए, लाइक नॉन स्टॉप बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं.
1: एक्चुअली सिंस कोविड आई एम फाइंडिंग कि हर साल इवेंट्स इंक्रीज
0: हो रही है.
1: पहले था महीने में एक था, फिर दो हफ्ते पे एक हुआ, फिर हफ्ते हफ्ते एक हुआ, अब तो एक हफ्ते में दो तीन हो रहा है.
0: जी और एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, जो इंडिया के काफी ग्रुप्स है, जैसे पंजाबी ग्रुप है, बंगाली ग्रुप्स हुए, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हमारे जो फिजी ग्रुप्स है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स.
1: एंड इवन नॉट जस्ट फिजी, आई एम लुकिंग एट लाइक ऑल द अदर
0: नेपाली एंड इवन बचे जो हम कहेंगे कीवी या व्हाइट जो कम्युनिटीज है, दे आर ऑल डूइंग इवेंट्स.
1: वो तो मैं कह रहा हूँ, पहले था कि आपको ऐसा सुनने में कि अच्छा महीने में एक हो रहा है या दो ना, फिर हफ्ते में, अभी ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई इवेंट होता है क्राइसिस में.
0: जी हाँ, और कुछ कुछ इवेंट्स है विच वन इज कमिंग अप, जैसे अवार्ड गिविंग इन दिवाली सेलिब्रेशन बाय भागेश्वर बाल भक्त ग्रुप, ये भी हो रहा है 31st अक्टूबर, सो दैट्स वन ऑफ द अदर वंस अगर आपके कैलेंडर में नहीं है. एंड देन वी हैव गॉट गरबा इज वेल कमिंग अप, गरबा नाइट फ्री एंट्री 17th and 18th अक्टूबर है बाय अरोहा इवेंट्स, वहाँ भी आप जा सकते हो. दैट्स हैपनिंग इन सेलविन, देर इज रोल्सटन जो कम्युनिटी सेंटर वहाँ पे, या सेलविन स्पोर्ट्स सेंटर आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर कॉलिंग दैट, सो वहाँ भी है. एंड द अदर वन इज देयर्स अनदर गरबा विच इज हैपनिंग एट लिंकन, लिंकन जो इवेंट सेंटर उसमें रहेगा फ्रॉम नॉट फ्रॉम 6:30 PM एंड इट्स ऑन सैटरडे 10th अक्टूबर. एंड 10th अक्टूबर दैट्स वेन फिजी डे, आई नो मेनी पीपल वुड बी सेलिब्रेटिंग फिजी डे दैट डे, लेकिन फिजी डे टूर्नामेंट भी है नाइन असाइड, वो भी हो रहा है. एंड दैट हैज टू बी 10th अक्टूबर, येस जी वो भी 10th अक्टूबर ही है, सो दैट्स अनदर इवेंट ऑफ. And then Diwali, we've got a Selvin Diwali on a 1st of November 2 to 9:30 PM, so that's also going to happen. So yeah, things are changing. जैसे हर चीज होती है, हम अपने जब देश में थे then it happens a bit different, और यहाँ है then the community comes together and किसी particular venue पे सभी लोग आते हैं, and then we see the performances, celebration, वो भी आपको देखने को मिलता है. And if you are looking around then actually this Friday we went to a night market that was in it was Hereford Street.
1: जी हाँ, एक्चुअली आपने जो फिजी डे का बोला मुझे भी क्लिक किया, आज रात को 9:50 फिजी और जापान का फाइनल पैसिफिक नेशंस का.
0: नाइस, हाँ मुझे पता ही नहीं था कि यू नो जापान वाज इन पैसिफिक आइलैंड्स, or is it just because they are in the Pacific Ocean?
1: Pacific Ocean, ha. So okay. Any country that borders Pacific Ocean, they are playing, except for Australia and New Zealand.
0: Okay,
1: so they have their own tournament. But apart from that, जैसे अमेरिका हुआ है, फिजी, all the small islands, Japan, they are all playing Pacific Nations Cup. I think there's like about 8 teams playing.
0: Yeah, and did you realize today is Happy Radha asked me?
1: I have no idea.
0: मैंने first time ये सुना है. So I just so actually हमारी page पे post छोड़ा गया. So that's I'm looking at it now. So सभी को happy Radha Ashtami. This is the first time actually I heard about it. So anyways, I know this new, we are learning new things. I mean, especially in Christchurch, so many things हमें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब हम यहाँ पे आए, we are mixing and mingling with other groups and we are learning a lot of things. And the other program that I need to mention is Vyangam Yoga. ये भी आ रहा है and you can even participate that in that one as well. It's at going to be Templeton Hall, 64 Cake Road. I know you know the address. So this the other program on 26th of September, Saturday को, जहाँ पे नामदेव जी महाराज और सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज भी आ रहे हैं. सो इफ यू वांट टू गो देयर, आप वो भी अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हो. सो दैट्स अनदर अपकमिंग इवेंट, सो क्वाइट एक्साइटिंग. काफी जैसे मैंने बोला है, बहुत कुछ हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है. एंड देयर इज अनदर जी हां, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अनदर जो दुर्गा पूजा है, दैट्स अ डिफरेंट वन, क्राइस्टचर्च दुर्गा पूजा, दैट्स डन बाय क्राइस्टचर्च बंगाली कम्युनिटी. यू कैन इवन गो देयर एज वेल, एंड इट्स हैपनिंग ऑन 17th of October. ये रहेगा हेगली जो I won't say Hegley Park, it's actually Hegley Avenue, Multicultural Recreation and Community Center.
1: I think that comes in Hegley Park.
0: Hegley Park ही बोल सकते हैं. That is part of Hegley. It's south Hegley. South end.
1: It's by Gull.
0: Okay.
1: Simple hospital और इधर इस तरफ है.
0: Yeah.
1: क्योंकि जस्ट करके Hegley Park में जो event होता है, it's more towards Kilmore Street का वो कौन होता है ना, वो जो कौन सा है towards
0: सिटी हम कह सकते हैं, बिकॉज़ इट्स मोर लाइक
1: सिटी तो दोनों बगल है, इट्स मोर लाइक जो
0: इज इट रोल्सटन इफ
1: आई थिंक रोल्सटन इफ टुवर्ड्स द म्यूजियम,
0: हां
1: म्यूजियम के बगल में वहां पे होता है जैसे रेवे, एंड ये वाला टोटली ऑपोजिट.